दुखी ब्रह्म न कोई एक घर माठी दलित्री थिए बालक तीन पुत्र उनका आपू दुई दंपति सलाह करी ज्येष्ठ बाबू तीरा भो

दुर्ग प्रसाद सेवापति कांचक साहब सुनखानी शिवसारा सुदामा की नारी कर चली भारी विपत्ति ले पति से ऊंचाई बिनती कर चिंता पिटर ले गुरु देवता राजा और पुन भला मान सका निदान खाली हर बंचन कहुंच ज्योति समना देव के ही सौगर मन देव चंगा कर मुदन चौधरी का हर्षित मुलाका नगर में इच्छा वर्तन में विचार मुझे स्तंभ जमा कर दी सही स्तंभ बली गए प्रयोजित पूछे द्वारिका में नारायण जन बाला का ओ जन नो बाला का ओ जगमग करने मन चित हरने।

0: नमस्ते, म बाल गायक अंकित खड्का। मेरो नयाँ गीत बजारमा आउँदैछ, सबैले माया।
1: श्रमजीवी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड।

समवेदन। रेडियो सैलुङ दोलखाका प्राविधिक प्रमुख प्रदीप सेन्चुरीका पूजनीय पिता दोलखा भीमेश्वर नगरपालिका तीन निवासी पूर्ण बहादुर सेन्चुरीको यही मिति 2083 आश्विन

0: नमस्कार
1: रेडियो शैलम सामुदायिक एफएम बैठे में थप्लो 7 MHz बाट मुंबई प्रसाद साहब कोटा आज विक्रम संवत 2083 साल आश्विन कृष्ण पितृपक्ष सन 2026 अक्टूबर 1 तारीख आश्विन 15 गते बिहीबार पंचमी तिथि
0: अब स्तुति करूं
2: आयु द्रोण कुमार कैसरिया हो साक्षेण कल्पय भरी।

दौलतले परिपूर्ण होस् पवन जय नै परेका घरे मन्दाकुन सबले दुर्योधन समान कर्णै समान दानमा तागत श्री बलराम कैसरी होस् सद्वात कै काममा राजा धर्म कुमार कैसरी होस् श्री ब्रह्म ज्ञान अनि विदुर कैसरी ज्ञान होस् सुजनमा मानुन बडाले पनि कृति उज्ज्वल होस् सुत सहित

गिरो यत् कर्मम करोमि तत्तदखिलं सम्भो तताराधनम् करणकर्म कृतं वा कायजं कर्म जम्बा शरणनयन जम्बा मानसापराधम् विहितम विहितम्।

0: परमात्मा
1: मेरो नाम सुविधा पोखरेल जफेबाट आको म एउटौ शंख कपाला भूषित करौ मालस्ती माला धरौ देवौ द्वारौ तिस्म चानन निलौ नागरी गोवर्धनौ तिरिदक्षे बलिदक्षे।